जब आए सुप्रभ को पयो जन्मत राजग आए। अब मैं कथा छिनछेपते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाठ पयो मैं जोर कार बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते अहं संत अंत लहेंगे मुगत फाल।

राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई भाकत नेत सुरग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत चाव पाई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तिह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद शुवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार सद्रव तीर तरंग।

सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहे हम एक न जानियो श्री यशपान कृपा तुमरे कार मैं ना कहियो सब तो हे बखानियो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के।

ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका हो ए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई, तरस पाया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया तरस पाया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया।

अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडौत खड़ कर्म मारात रहता। हाँ हाँ।

0: गुरु प्यारे गुरु सवारी वाली गुरु साहसा इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका दी खिमा बुलाओ पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पैसा पैसे सुरजीत सिंह जी कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब वाले उन्होंने सत्कारयोग रागी जथेदार जिन्होंने आप संगत आरती आरता शब्द कीर्तन के द्वारा निहाल किया है। हुण सत्कारयोग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी मुख ग्रंथी गुरद्वारा जामनी साहब वाले आप संगत न कथा विचार के द्वारा निहाल करनगे। 16 जुलाई तो सत्संग जी जो मेरी प्रिय समागम आरगम होणगे जो पहले दो दिन कथा दरबार सजेगा 18 जुलाई तो 22 जुलाई तक शाम के समय ढाडी तकवीशर दरबार सजनगे 23 जुलाई तो 2 अगस्त तक कीर्तन दरबार सजेगा 1 अगस्त को सत्संग जी सालाना नगर कीर्तन है सवेरे 9 बजे गुरु चरणा विच अरदास बेनती करके नगर कीर्तन की आरंभता होगी 2 अगस्त को सवेरे 6 बजे खंडे बाटे का अमृत संचार होगा। सो सत्संग जी आप संगतां ने सारे ही समागमां विच हाजरियां भर के सेवावां करके लाहे प्राप्त करने जी नगर कीर्तन विच सत्संग जी सुक्का प्रसाद कड़ा प्रसाद दे वास्ते देसी घिओ अते डिस्पोजल बर्तना की सेवा गुरु घर विखे जरूरत है आप जी समर्था के मुताबिक कर सकते हो। हुण लंगर हाल दे विच प्रसादे पकाउण की सेवा अपने समय अनुसार करके सत्संग जी लाहे प्राप्त करने जी बेनती प्रवान करनी जी। आओ हुण कथा विचार दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सगले साच सुख तेरा नाओ गोर मिल नानक बुझिया सदा एक सो गाओ।
1: एक सो ए पाठ अलग अलग संपर्दा दे विच पढ़ाया जांदा है, पोथियां दे विच एक पाठ इकट्ठा छाप दिता गया है।

कुजा पाठ दोवें वरा तिने वारी पोला कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा मे रवि पाठ में नासकी नहीं उच्चारण करना रवि पाठ संबंधक रूप दे विच करना कुजा मे रवि।

0: हजार आलम इथे विश्राम ला के एक लखाना, एक लखाना पाठ पोथियां च लिखती रूप विच हुण लिखण लग गए हन, पर संप्रदाई पाठ है एक लखाना जिहड़ा लल्ला है वह खाना दे नाल जोड़ के ते एक अलग करके उच्चारण करना, चंदी हजार आलम एक लखाना। हाँ जी,
1: आसपात गाजपात नर है नरेंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद, राग सूही महला पहला।
0: सूही राग दी रमता सतगुरु जी दी कृपा सदका हुई है, विशेष ध्यान दे के सरवण करना है बाणियां। हुक्मनामा साहब ज्यादा आउंदे है साध संगत जी, जे ज्यादा शब्दां ते रोकीए फिर भी औखा लगता है, तो इस करके विशेष ध्यान आप संगतां ने देना है। सारा जिन्ना समा हुण चल रहा है हुक्मनामा साहब बाणी चाउंदे हन। हांजी,

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हों मैं रोग मानक को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

स्वामी महावीर, पता नहीं कितने दीपक कितने दीपक। और एक आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, जलदा या दीपक ही बुझे दीपक नु जलंदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते ने जब दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे की करनगे। जलांदे रहने ना बुझे हुए दीवियां नू ए अवतारी पुरुष, उन्हां दी रोशनी इन्हां नू रोशन नहीं कर सकी क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसे हद तक नाकाम होके जगत तो गया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जिहड़ी दुष्टपना बिरतियां ने इन्हां सारियां दी मैं जड़ां पुटनियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा अरे कृपा निध सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, कोई महान धर्म दा दीपक आ जांदा है इन्हां बुझे होया दीवियां नूं जलाण वास्ते, पर धर्म दी हानि ते हो रही है और रोज रोज ए हान वद्दा जा रहा है। लाभ ते कोई नहीं है। ठीक है, तुलसी दी शरदा ऐसा दसम ग्रंथ दे च भी है, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा। जद घोर मस्या दी रात हो जाए आउंदे ने अवतार, पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने। पर कीता की जाए, जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया, अंधेरे दे जीवना जिस लई जन्मदिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिस लई नचना ते टपना बन जाए, ऐसा बुझया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकदा मेरे विच तेल नहीं है वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इन्हां जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हां, एक दीवे नूं ते कह दिता कि घर दे च क्यों जल रहा है, ये 14 साल बनवास निकले जंगल दे। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे च जलिया। श्री कृष्ण दा जन्म जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे च होया। एक जलदे चिराग नूं बाबर ने अपनी जेल विच पा दिता। एक जलदे हुए दीवे नूं प्रकाशमई दीपक नूं वक्त दी हकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। एक जलदे हुए चिराग नूं चांदनी चौंक विच फूका मार के बुझाण दी कोशिश कीती गई, बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दे च तेल स्वयं परमात्मा बने आया है, जिस दे च वट स्वयं ईश्वर बने आया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किवें बुझेगा। लेकिन इतना ते कहा जा सकता है, वो किवें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है वट नहीं है, तो तेल की हो सकता है, वो वट की है बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक विच इन फरमान करदे ने, पोथी पुराण कमाइए भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउ जले कर चानन साहिब तौ मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने गल मन ले, ए मुसलमान कुरान दी गल मन ले। घर विच कुरान है पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने, गीता दा पाठ हो सकदा है, पर हिंदू

मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारों गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो, पश जो उदर भरों कौ नानक प्रभ बिरद पछानो।

ऊपर दोष है, ओदे वल्लों केस लड़दा है, ते तकड़ा वकील दलीलां दे के अपनी लियाकत नाल उस केस नू जित लैंदा है। कई कई वारी कहने वकील बड़ा तकड़ा सी, महाराज कहिंदे ने सतगुरु ना परमात्मा दी दरगाह दे वकील ने। उस घर विच आ कोई डिग्रियां तेरियां नहीं चलनियां, जो मर्जी इकट्ठा करी रख, उथे ता केवल जे बसीट कै प्रभु दी दरगाह ता ते सतगुरु हजूर ने ओ पवित्र सलोक के जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं ठीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीट आ गुरु सज्जन मिला, के जेड़ा परमात्मा दी दरगाह दा वकील है, जेड़ा बिछड़िया नु मिला देंदा है। बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीट, हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा कट्टे खोमे रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिना तुरे पया संजो। भाई साहब नु पुछया कि गुरमत दी गल कर दिया कि जिंद नाल किवें सतगुरु, मौत ता इको जी जाना सब ने है। भाई साहब ने तीन बचन कहे, वो कहिंदे ने जदों कोई सिख गुरु दे बचना नु अपनी जिंदगी विच अपना लैंदा है, फिर गुरु किवें मददगार ने। उन्होंने कहा कि मीह पैंदा होवे जां मन लो कि पानी दा गिलास कोई भर लै, ते कोरा कागज लैके उस उपर आपां पानी धार बन के सटी जाइए, ते जां कोरा कागज पानी दे विच पा दिओ, ते पानी विच पिया होया कागज वह गल जाएगा। उदाहरण दा एक पाखी लईदा हुंदा, अक्सर दास बेनती करदा कि विचार करदिआं जो प्रकरण चलदा होवे, जिथे मच्छी दी प्रीत दी गल बाणी च कीती गई है, उथे मच्छी नूं जीभ दा लगा होया रोग उहदा वी जिक्र कीता गया। जे आपां कहीए जी प्रीत दी गल करदे उहनूं तां रोग लगा, महाराज कहिंदे जो प्रकरण चलदा है जिस वेले ते गल ढुकदी है उहनूं स्वीकारना चाहीदा है। हुण उह कागज पाणी विच पाओ गल जाएगा, पर उहदे वर्गे कागज पानी विच पान तो पहला उनु कोई थिंदे विच क्यों विच थिंदियाई विच चंगी तरह डोब लवे, ते उस कागज नु पानी विच पा, ओ कागज छेती गलेगा नहीं। इकला कोरा कागज आवे उनु पानी अवश्य गालेगा, पर जदो कोई थिंदे नाल क्यों नाल भिजा होया कागज पानी च पांदा है, पानी भी ओनु छेती गाल नहीं सकदा। तेरी सियाणप दा कोरापन तेनू गाल देगा जे गुरु दे शब्द गुरु दे बचना दी थंदियाई तेरे अंदर चली गई। सच एवे कि थिंदे कागज नू जिवें पानी नहीं गालदा, जिस जमदूत तो सारे लोग तरींदे ने, जिदा अंदर बाणी नाल भेजा उहदा जमदूत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक पक्ष है। दूसरी बेनती कि रूह भावे करोड़ां गठां कोई कठियां कर लै, ते अगे दास ने बेनती की चिंगारी एक ही चाहिदी है, एक माचिस दी तीली कोई बाल के उस गठा विच रख दे, ते देखद्या देखद्या करोड़ा गठा रूह दियां सड़ के राख हो जाणगियां, पर उसे रूह विचों कोई थोड़ा बहुत रूह पूणी जिन्ना बत्ती वटन जिन्ना वक कर ले, ते उस रूह की बत्ती वटे बत्ती वट के तेल दीवा तेल वाला यूं कह लो दीवे नू तेल नल भर लै, ते उस बत्ती नू तेल वाले दीवे विच रख देवे, ते एक पास्यों अग ला दे। हुण करोड़ां गठां रूह दियां वेखद्या वेखद्या सड़ के राख हो गईयां, पर एक बत्ती जिहड़ी वट्टी है तेल विच भिज्जीए ओ कई महीने जलदी है, पर अग तां ओही है जिहदी एक चंगियाड़ी करोड़ां गठां साड़ सकदी है, पर वह बलती कोई ओदे मूह च ओदी युरत क्यों नहीं कि सारी बत्ती नूं इको वेले साड़ सके, नहीं साड़दी। वह चानण देण दा काम करदी है, क्योंकि वह तेल च भिजी है, ओनू मर्यादा दा वट दिता गया है। जेड़ा बंदा गुरु की मर्यादा विच आ जाएगा, गुरु दे शब्द गुरु दे बचन विच भिज जाएगा, कहन लगे जिवें अग बत्ती नूं छेती नहीं जाल सकती, जेड़ी मौत तो लोग भय खांदे ने गुरु सज्जन की कृपा नाल होवे ओ मौत दा भय भी कुछ नहीं कर सकता।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਦਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰ ਨੀਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਹਿੰਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुदै को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ
0: नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही महान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में देखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्रय रूप न देखै नेत्र
0: साधक टैल संत संग हेत
1: कर्णन सुनै काहू के निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टरै
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते होए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वै ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबराह नाम जपावै
0: नानको वैष्णो परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवै
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै
1: हर की कथा हृदय बसावै
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल
0: सुख मैं जाने अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावै जन कोय
1: कर कृपा अंतर उरता है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतारै
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नाही वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: पसरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी
0: कई कोट मन प्रमे उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट पै अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने
1: को कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमाहे
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस्थान सातक
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन सुमंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पसाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर्म रिकाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपत रे भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहु जोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काल थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मा चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब किस प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी
0: राम नाम सख तन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रत्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे है सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नो विस्तार
1: कई बार पसरे उपासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बो भांत
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत् के बेते
0: सदन हर एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सह समाव है
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग
0: जोत स्वभाव सोई होग
1: फिर मैं था पुताप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अधार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मन उगत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन शास्त्र रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पथ उधारे
0: आप करे अपन विचारे
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत स्वभावे सोई करावे
1: किसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत स्वभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस धावे
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म करीब नवाज
1: जा का दृष्ट कछु न आवे
0: तिस तत्काल दर तिस प्रगटावे
1: जा को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न कने जग
1: जीव पिंड सब इसकी रास
0: कट पूर्ण परम प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ
0: कल करावन सब को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जोत स्वभाव है सोई फन थी
1: प्रभु ऊंच नीच मैं बस है
0: प्रभु सोग हर करंग हस है
1: प्रभु निंद चिंद व्यवहार
0: प्रभु उपकाश प्याल
1: प्रभु बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: प्रभु नृत्य करे बहु भांत
0: प्रभु सोए रहे दिन रात
1: प्रभु महा क्रोध विकराल
0: प्रभु सर्व की होतर वाल
1: प्रभु होए वह बड़ राजा
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा
1: प्रभु अब कीर्त में आवे
0: प्रभु भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभु राखे तिव ही रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
0: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान
0: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: प्रभु पीठ हस्त पतंग होए जिया
0: अनक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तिव न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: प्रभु साध संगत हि पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म का संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपाति होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन प्रभावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का हुए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना पदा आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: उदय देखे करे विवेक
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन का हो किस होए
0: हाथ नंतर एक ऐसा होए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उतर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन हार जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो ही मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यो जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यो बवार तिल खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जोत सुभावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाई
0: है संत का दुखी ना मरे ना जिवाई है
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास ग्रास
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाई
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਹ ਸੰਗ ਪਿੰਡ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤਮਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਾਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕੁਛ ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਹਰ ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ

0: को सेवा बन आई,
1: हुकम बोझ परम पद पाई,
0: इसे ऊपर नहीं विचार,
1: जाकै मन बसया निरंकार,
0: बंधन तोर भय निर्वैर,
1: हर दिन पूजा गुर के पैर,
0: हे लोक सुखी परलोक सुहेले,
1: नानक हर प्रभु आपे मिले,
0: साथ संग मिल करहो आनंद,
1: उनका वो प्रभु परमानंद,
0: राम नाम तत् करहो विचार,
1: दुर्लभ देखा करहो उदार,
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
1: प्राण तरन का एह स्वाव,
0: आठ पैर प्रापे को नेरा,
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
0: सुन उपदेश हृदय बसावो,
1: मन इच्छे नानक फल पावो,
0: हलत पलत दो लेहो सवार,
1: राम नाम अंतर उतार,
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
1: जिस मन बसे ते साच परिखिया,
0: मातर नाम जपो लिबलाए,
1: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
0: सच व्यापार करो व्यापारी,
1: दरगह निभ खेप तुम्हारी,
0: एक टेक रखो मन माहे,
1: नानक बहुर न आवे जाहे,
0: जिससे दूर कहाँ को जाए,
1: उबरे राखन हार ते आए,
0: नेर पाओ जपै सकल पाओ मिटै,
1: प्रभ कर पाते प्राणी छुटै,
0: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख,
1: नाम जपत मन होवत सुख,
0: चिंता जाए मिटै हंकार,
1: जिस जन को कोई न पहुँचन हार,
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
1: नानक ताके कार्ज पूरा,
0: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट,
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
0: चरण कमल जाके अनूप,
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
0: भर सेवा सेवक परवान,
1: अंतर जामी पुरख प्रधान,
0: जिस मन बसै सुहोत निहाल,
1: ताके निकट न आवत काल,
0: अमर भये अमरा पद पाया,
1: साध संग नानक हर त्याया, श्लोक
0: ज्ञान निरंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
1: हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास, अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभु दीठा,
1: ना प्रभु का लागा मीठा,
0: सकल समिग्री एक घट माहे,
1: अनक रंग नाना दृष्टा है,
0: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम,
1: यही मैं इसका विश्राम,
0: सुन समाद अनहद तहनाद,
1: कह न जाइए चरज विस्माद,
0: तिन देखिया जिस आप दिखाए,
1: नानक तिस दिन सो जी पाए,
0: सो अंतर सो बाहर अनंत,
1: घट घट व्याप रहा भगवंत,
0: धर्म माहे आकाश पयाल,
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल,
0: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म,
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म,
0: पौन पानी संत माहे,
1: चार कुंट दा दिसै समाहे,
0: इसके भिन्न नहीं को ठाउ,
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ,
0: वेद पुराण सिमरत मैं देख,
1: सस्य सुर न खतरे मैं एक,
0: वाणी प्रभ की सबको बोले,
1: आप डोल न कब हूं डोले,
0: सर्व कला कर खेल है खेल,
1: मोल न पाइये गुणे मोल,
0: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत,
1: धार रहे स्वामी ओत पोत,
0: गुर प्रसाद भरम का नास,
1: नानक तिन मैं एहो विसास,
0: संत जना का देखन सर्व ब्रह्म,
1: संत जना के हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने शुभ वचन,
1: सर्व व्यापी राम संग रचन,
0: जिन जाता तिसकी एह रह,
1: सत वचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सोई सुख माने,
1: करन करावन हार प्रभु जाने,
0: अंतर बसे बाहर पियो ही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: जिस प्रभु ते सगली उत्पत,
0: जिस भावै ता करे विसार,
1: जिस भावै ता एकंकार,
0: अनक कला लखी नह जाए,
1: जिस भावै तिस लय मिलाए,
0: कवन निकट कवन कहिया दूर,
1: आपे आप आप प्रभुर,
0: अंतरगत जिस आप जनाए,
1: नानक तिस जने आप बुझाए,
0: सर्व भूत आप वरतारा,
1: सर्व नैने आप खनहारा,
0: सकल समग्री जाका तना,
1: अपन जस आप ही सना,
0: जाने खेल बनाया,
1: आज्ञा कार्य कीनी माया,
0: सब कह मत अलिप्त हो रहे,
1: जो किश कहना सो आपे कहे,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
1: नानक जापा वैता लय समाए,
0: इससे होए सुना ही बुरा,
1: उरे कहो किने कश करा,
0: आप भला करतूत आत्मी की,
1: आपे जाने अपने जी की,
0: आप साज धारी सब साच,
1: पोत पोते अपन संग राज,
0: आपकी गर्मित कही न जाए,
1: दूसर होए ता सो जी पाए,
0: इसका किया सब प्रवान,
1: गुर प्रसाद नानक हो जान,
0: जो जाने ते सदा सुख होए,
1: आप मलाए लय प्रभ सोए,
0: ओ धनवंत कुलवंत पत वंत,
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: धन धन धन जन आया,
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया,
0: जाने मन का यह सुआ,
1: जन के संग जित आवे नाम,
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिस संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नान का सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: चौथ महला पहला पर पर गड्डी लदिए पर पर भरिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व बढ़त्या कल काल बेताल बियो बीज बदले के अब क्यों बेदाल जे होय तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवित खुमचड़ा ये सरम पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान में होनी पाहे प्रेमदार ज्ञानी ने तेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे खुके वदा गवे जो दका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तरमी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: जोर गिरथ बाहो दुआ पुरा तपे का सत गिरथ बाहो कल जुग रथ गण का कूड़ गैर रथ बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद कर नीच।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत, दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी, फलके थुक पवे निदारी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जेवा तग न अखी। बे तग गया पे बते।

छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब अग्नि में हरियं करियं करिमल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। पारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे। एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत भरा सब देश दिशान को बाज द ढोल मृदंग नगार मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भवेख भवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बेचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे।

जति जतत हर सब सो विचार हजार कदे कै श्री भगवान भजे बिन भूपते करति बिन एक न लेख।

दुष्ट जित उठव तत पाता सकल मलेच्छ करो रण कहता जिया सतु हज तव सरनी परे तिन के दुष्ट दुख तव मरे पुरख जावन पग परे तिहारे पुरख जावन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सावट।

प्यारे पंथ खालसा जन बख्शो जी ने माण्यो के माण ताण्यो के ताण ने उट्यो कि उठ धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सचे पातशाह जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सचे पातशाह जी आप जी का हजूर चरण कमला पास अरदास बेनती है सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी आप जी दे पवित्र स्वरूप दे प्रकाश कर दी सेवा कर दे अमृत गुरबाणी दा जाप कर दे समुचिया सेवावां निभाउंदिया होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खेमा बख्शो जी अगे तो समत बख्शीश करो जी पावन बाणी दा भाव संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सुरत शब्द दे नाल जो

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: ब्राह्मण को कर लाभ गोबर चढ़ना जाए। तोती टिका तैजा माली धाम लिछा खाई अंतर पूजा पड़िक तेवा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए इतना दम हला पहला
1: मानस कहानी कृ निवास श्री गंतन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ा भरपूर मत्थे टिका देड़ तोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैरों वे प्रवान मिले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसना जाना दे के चौका गड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे भी मत पिटे वाना साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे।

अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नहावे उतर नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन निहो लगा रब सेती देखने विचार रंगा सै रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाहां दरवार टुपर खर्च मंगा जब ए देता खाए

प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेत आवे चेत आवन का सद का सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रक्षा रियायत। देख तिख फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंग

जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामदि नूर अरसो पुरसो चटी उद जथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दीपती सज्जन सचा पातशाह सिर साहां दसाहो

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला, ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे ते डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है, चिंता ना कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है, ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया, मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका नां ते निकल आया, एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढ़वांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे पर्शियन होवे अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जब जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ये बच्चा बच्चा रह गया अगे नहीं जा सके। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जांच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका میرے کول کن بھی کوئی نہیں، میں اپنی آواز تیرے کنا تک پہنچا سکاں، میری زبان نو اجے بولن دی جاچ نہیں آئی۔ تیرے رستے تے میں چل سکاں، او پیر میں کتھوں لیا وا؟ ہے گے نے منک کول پیر، ایک کلب تھیٹراں دے مارگ تے چل دے نے، بازار دے مارگ تے چل دے نے، سنسار دے مارگ تے چل دے نے، کدی کدائیں کوئی قدم جو پرمارت دے مارگ تے چلن؟ ستگر کہندے میرے کول وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں جو تیرا دامن پکڑ سکن۔ ہاتھ ہیں منک کول، کدی پتراں دا دامن پکڑیا، کدی پتنی دا، کدی پتی دا، کدی ماں دا، کدی پتا دا، کدی متراں دا دامن پکڑیا، کدی پراماں دا دامن پکڑیا، کدی پین دا دامن پکڑیا، کدی پڑوسیاں دا۔ ہے پربھو تیرا دامن پکڑ سکاں، اجے میرے ہتھاں دے چو سکت نہیں آئی، اجے میرے ہتھاں دے چو پکڑ نہیں آئی۔ ہوندا تے ہے ہتھاں دے چ کوئی نہ کوئی دامن، ہر ایک دے ہتھاں چ ہوندا ہے، کسے دے ہتھے چ دامن ہے، کس دے ہتھے چ پتا دا دامن ہے، اس دامن دے آسرے تے چل رہے، کسے دے ہتھے چ پراواں دا دامن ہے، کسے دے ہتھے چ پتنی دا دامن ہے، پتی دا دامن ہے، اور کسے دے ہتھے چ پڑوسیاں دا۔ کدی کدائیں کوئی کبیر جیسا، روی داس جیسا، رامانند جیسا کہہ اٹھدا ہے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگمی بول، سبے ساک کڑاوے دتھے تو پلے تیڑے لاگی۔ اردو فارسی دامن کہہ دیندے نے، پنجابی وچ پلہ کہہ دیندے نے۔ گرو نانک کہندے نے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے، سفل ہو گئے ہتھ، تیرا پلہ میرے ہتھے چ آ گیا، مہان ہو گئے نے ہتھ، تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا۔ تے جد تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا، ہن جتھے توں اتھے اے دامن میرے ہتھاں چ، اے پلہ میرے ہتھاں چ۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے مہان واک ادھیاتمک گہرائیاں نو اپنے وچ چھپائی بیٹھا ہے، جس نو اجاگر کرن دی میں ایک نمانی کوشش کر رہا ہوں۔ بھج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہ لے ہو انگوریا، سرونا سرت نین سندر نہیں، آرت دوار رٹت پنگوریا۔ اے پربھو او خوبصورت نیتر میں کتھوں لیاواں جڑے تینوں ویکھ سکدے نے، اس تو زیادہ ہور کوئی اکھاں خوبصورت نہیں ہوندیاں جنہاں اکھاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے۔ ویکھو گے اکھاں، کسے دی اکھاں دے وچ دھن ہے، ٹپک رہا لوبھ، کسے دی اکھاں دے وچ روپ ہے، ٹپک رہی ہے واشنا، کسے دی اکھاں دے وچ اس دی اولاد ہے، ٹپک رہی ہے ممتا، ممتا ہی دسدی پئی ہے اکھاں دے وچ تیاں پتر نے، واشنا ہی دسدی پئی ہے اکھاں دے وچ روپ رنگ ہے، کرودھ ہی دس رہے ہے، اے لال اکھاں ہی دس رہی ہیں اکھاں دے وچ کوئی دشمن بیٹھ گیا ہے، اور دشمن نے اکھاں لال کر دتیاں، اکھاں لال نہیں ہویاں، دشمن نے لال کر دتیاں، دشمن نے اپنا رنگ آدھا پکت پہنے۔ کدی کدائیں او اکھاں جنہاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے، اور جد پرماتما اکھاں چ بیٹھتا ہے، انہاں نیتراں تو کوئی نیتر خوبصورت نہیں ہوندے، وہ ایسی خوبصورت اکھ جہدے چوں پرارتھنا جھلکدی ہے، جہدے چ پریم جھلکدا ہے، جس دے چوں سم درشٹی جھلکدی ہے، جس دے چوں دیا ڈل ڈل کے پیندی ہے۔ اسے درشٹی نوں آکھیا گیا امرتمئی درشٹ، امرت درشٹ، نہیں تے درشٹی بھی زہریلی ہوندی ہے، جویں کئیاں دے بول زہریلے ہوندے نے، کئیاں دی تکنی بھی بڑی زہریلی ہوندی ہے، کئیاں دے بول زخمی کر جاندے نے، کئیاں دی تکنی بھی آگات پہنچاندی ہے، چوٹ پہنچاندی ہے، گرا کے رکھ دیندی ہے۔ تکنی دے وچ زہر بھی ہے، تکنی دے وچ امرت بھی ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेओ अंगुरिया सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोला नु सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज संसार दी आवाज किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने बहरे ने हर एक दे कन बहरे ने आवाजा सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने संसार दी आवाज सुन सकदे ने निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा जितनियां भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रहियां पंछियां दियां पशुआं दियां मनुखां दियां बदलां दी गर्जन पवन दी शांशां मैनू ते इंज लगदा है इह तों ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज सब तेरा नाद सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने मेरे कोलो कन भी नहीं मेरे कोलो जबान भी नहीं मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलदा। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने बाहर दे नहीं इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने मन लैंदी है समुची वसनीक उसदे बचना नू उसदे बोला नू मन लैंदी है सुनदी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचदे ने उत्थे भी सुने जांदे ने। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च पिकद खुशकिस्मत इंसान जिस दे बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनदा है निरंकार उस दे बोल परमात्मा नू भी सुनने पैंदे ने उस दे बोल ईश्वर नू भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने वो जबान में कितों लेवा जेडे तेरे तक बोल पहुंचा सके वो कन में कितों लेवा जेडे तेरे बोल सुन सके वो नेत्र में कितों लेवा जो तेनु वेख सकन और हत्था दियो मैं पकड़ कितों लेवा जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कुल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलो खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलो खो लईए फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हाथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर सुन नहीं सकता पत्थर वेख नहीं सकता पत्थर सुंग नहीं सकता पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर जिवें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं पत्थर दे च कोई गति नहीं पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी ओ जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त कीता चलो खैर सुन दे पया चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती की थी फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਲਗਭਗ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਗੋਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਏ ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੈਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गए, बराबर हो गए। भाई साहब कहंदे ने मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाई है, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, मैं नेड़े किस तरह आवा। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चलना आ गया हे प्रभु मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना आया जिसने आज ही चलना सीखा तो कितना के चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम उठण दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलण दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लैंदा है परमात्मा, बां पकड़ लैंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा, थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने। एक झलक है, पहला प्रकाश की है, अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जाना। बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई दे देने ना गुनाह नू ओमंदा। आज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नू किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पैने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी, कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पेंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पेंदी है, जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु दी शक्ति कित्थे, जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा दा पुन्न प्रताप कित्थे, जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल, जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पूछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा, डार्क रूम दे जाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा, डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तेनु रोशनी भी दिखाई देवेगी, अंधे नु अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नु कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नु कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है, आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनु अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा, जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहने ने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंदलाल थे, ते कहने लगे तुसी मैनु बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो, जद कोई बहुत प्यारा लगे बहुत चंगा लगे बगल गिर करन नु जी करे उन्नु कोई और करन नु भी जी करता है, उस तो निछावर होण नु भी जी करदा है, उस तो सदके होण नु भी जी करदा है। सतगुरु कहंदे तैनु कुछ देना चाहंदे आ, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है मंगो, तो ओ अखां दे जिड़ियां तेनु वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन, इना अखां ने बहुत कुछ देखे है, अजे उस झलक नु नहीं वेख्या जिनू वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी, तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार मतल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है, सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी